जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। सो ऑल माय फ्रेंड्स, अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर न होगी तेरी कीमत, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, ये सारा खेल मेरी दोस्ती का है मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक समान है। एट द लास्ट, डेडिकेट टू ऑल माई कमीने फ्रेंड्स, मुसीबत का सिरप हो तुम, टेंशन का कंप्यूटर हो तुम, आफत का इंजेक्शन हो तुम, पर क्या करे आखिर, क्योंकि दोस्ती का ऑक्सीजन हो तुम। आई लव यू माई ऑल।

दस विश्व देवताओं, अश्विनौ बे अश्विनी कुमारों, मरुतः 49 मरुतों, असंख्या जनसा संख्या ने गणना आवे त्यां अधूरा पावे त्यां वात पूरी थई गई। एक को एटले एक पहला शून्य होय, पण आ अपना पुराणों नी अंदर जे कक्षाओं छे ते बधा आ बधा बधा सुपर ह्यूमन मानस थी उपर ना छे, अतिमानवीय तत्वो छे आ बधा। कया अतिमानवीय? तो के पुराणों कहे छे एम आदित्यो, रुद्रो, वसुओ, साध्यो, विश्वदेवो, अश्विनाओ, मरुद्गणो, रुद्रादित्या वसवो, ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्पश मरुतश्चोष्मपाश्च उष्मपाः, एटले पितृगणो। उष्मपाः एटले पितृगणो, पितृओ अने देवताओ, अर्ध देवताओ, एनी जे आपणे संतोष आपीए ने तर्पण करीए त्यारे बधाने तर्पण करता होईए छीए, એ બધા જ એનથી સેજ નીચે ઉતરીએ એટલે ગંધર્વ, યક્ષાસુર, સિદ્ધ સંગા, યક્ષો, ગંધર્વો, અસુરો, સિદ્ધો,

विस्मय थी, अजाइबी थी। छक थई जईने आ आ, कारण के ए पण आ परमनो जे अंश छे, भले उच्च अंश छे, अपने जे पंचेन्द्रियो थी बनेला, दशेन्द्रियो थी बनेला देहो छे, एना करता ऊंची कोटी छे। जीव जंतुओ थी प्राणियों श्रेष्ठ हो, प्राणियों थी मनुष्य श्रेष्ठ हो, तो मनुष्यों थी आवा अर्धदेव अने देवी तत्वों जे हो, एमने एमने भले दशेन्द्रियो वालू शरीर ना हो, पंचभूतात्मक शरीर ना हो, पण ए पण पहला परम तत्वनो अंश छे, अने ए पण आनी सामु ज्यारे जुए त्यारे केवी रीते जुए छे, तो के विस्मिताः वीक्षन्ते, तमने विस्मयमां आवी जईने जोई रह्या छे, आहा आ शुं छे, स्तब्ध थई जवाय, छक थई जवाय। आ बधा तमने विस्मित थईने जोई रह्या छे, कारण के तो એમને પણ મૃત્યુ નથી, એ તમારી અંદર ભળી જવાના, એ વાત બરોબર છે।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। वेलकम टू दिस एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं 80s, 70s, 60s के जमाने की जुबली गर्ल के बारे में। इन्हें डैजलिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था। इनफैक्ट बॉलीवुड की यह पहली टॉम बॉय मानी जाती थी। नाम है इनका आशा पारेख जी। तो आज एक बार फिर से दिल से याद करेंगे चुलबुली सी इन अदाकारा को। इनके कई सारे गाने भी लेकर के आई हूं मैं आपके लिए। कुछ ही देर के बाद आपको बताऊंगी कि कैसे रिजेक्शन

0: बना इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन, और ना एक्सेप्ट किए जाने के कारण इन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म मिल गई। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। फिलहाल सबसे पहला गाना आन मिलो सजना फिल्म से लता मंगेशकर जी और किशोर दा की आवाज में।
1: अच्छा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आशा पारेख जी की जिंदगी की कुछ ऐसी दबी हुई कहानियां आज मैं निकाल के लाई हूं आपके लिए, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आशा जी 16 साल की थी और उन्हें उनका पहला ब्रेक मिल गया था। वो डांसर तो हमेशा से थी ही, अदाकारा बहुत अच्छी थी, तो लोग उन्हें जाना करते थे। ये मूवी जिसमें उन्हें ब्रेक मिला था वो मूवी थी विजय भट्ट जी की मूवी गूंज उठी शहनाई। लेकिन विजय भट्ट जी ने कुछ सीन शूट किए इनके साथ और उन्हें लगा कि ये स्टार मटेरियल नहीं है, दम नहीं है इस लड़की में।

और उन्होंने आशा जी को मूवी से निकाल दिया। लेकिन मानिए किस्मत कैसे खेल खेलती है, तुरंत इस मूवी से छूटने के बाद ही उन्हें दिल दे के देखो मूवी मिल गई, जो कि शम्मी कपूर जी 10 साल बड़े उम्र में आशा जी से शम्मी कपूर जी के साथ में थी ये मूवी। एंड दिस वेंट ऑन टू बी अ सुपर डुपर हिट, जिसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक। आशा जी आगे बढ़ती चली गई और शम्मी जी उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बन गए, और सबसे अच्छी जोड़ी भी इन दोनों की स्क्रीन पर लगती ही थी, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरी मंजिल इनकी सबसे बड़ी मूवी बनी थी वैसे, उससे गाना सुनाएंगे आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल कन्यादान फिल्म से गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में, उन खतों के नाम जो कि आपने भी कहीं ना कहीं अपने तकिए के गद्दे के नीचे छुपा के रखे हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आशा पारिक जी स्पेशल है ये एपिसोड, मैं हूं रुचि आपके साथ। खुश मिजाज ये एक शब्द है जो कि हम आशा जी की जिंदगी और आशा जी की पर्सनालिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। कुछ लाइनें हैं, चंद लाइनें जो मैं ढूंढ के लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है कि आशा जी की जिंदगी पर बेहद सूट करती हैं। है कुछ ऐसी, छोटी सी जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की

0: मुस्कान में खुश रहो।
1: क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को,
0: क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को यार, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर हाल में खुश रहो।
1: एक तरफ जहां आशा पारेख जी, जैसा मैंने कहा, इतनी खुश मिजाज इंसान, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग थे जो कि आशा जी से बहुत जला करते थे, स्पेशली उस जमाने की एक्ट्रेसेस। कौन थी ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वेलकम बैक वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं हूँ रुचि आपके साथ। जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाती है जिंदगी में, वैसे ही दुश्मन भी हम बनाते चले जाते हैं, वैसे ही लोग हमसे जलने भी लग जाते हैं। मैं मानती हूँ जो इंसान सबसे ज्यादा सफल होता है उसके उतने ही कम दोस्त होते हैं। ऐसा ही कुछ आशा पारेख जी के साथ में भी हुआ। आज का हमारा ये शो जो है वो आशा पारेख जी पर आधारित है। उन्हीं के कुछ बेहतरीन गाने भी सुन रहे हैं आप। एक समय ऐसा था जब सिमी ग्रेवाल जी और अरुणा ईरानी जी आशा पारेख जी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि सिमी ग्रेवाल जी का मानना था कि दो बदन फिल्म में उनके रोल को छोटा कर दिया गया था, काट दिया गया था आशा पारेख जी के कहने पर। और ऐसा ही कुछ मानना था अरुणा ईरानी जी का भी कारवा फिल्म के टाइम पर। लेकिन मजे की बात यह है कि आशा पारेख जी खुद कहती हैं कि इन दोनों को अवार्ड्स मिले थे अपने रोल के चलते। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड सिमी ग्रेवाल जी को भी मिला था और अरुणा ईरानी जी का भी नॉमिनेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके रोल को सही ढंग से कटवाया था आशा पारेख जी ने। आशा जी कहती हैं कि अगर जैसा रोल पहले लिखा गया था वैसा ही मूवी में आ जाता तो लोगों को वो मजा नहीं आता। बताइए, तो ऐसी हैं हमारी आशा पारेख जी। इसी बात पर उन्हीं का एक बेहतरीन गाना आपको सुनाते हैं अगला, और कुछ ही देर के बाद आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मूवी थी जिसे नहीं करना, जिसे ठुकरा देना आशा जी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनकर रह गया। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

जाकानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आशा पारेख जी स्पेशल एपिसोड है ये। आशा जी ने ना तो कभी किसी से शादी की, ना ही किसी के साथ उनकी कोई बड़ी लव स्टोरी रही। एक अकेली चीज जिससे आशा जी को बेहद प्यार हमेशा रहा, वो था डांस। इसी डांस के चलते आशा जी ने लंबे समय के लिए देश छोड़ दिया था और अलग अलग कंट्रीज में जाकर के वो अपने शोज, अपने परफॉर्मेंसेस किया करती थी। और उसी के कारण इनके हाथ से एक बहुत बड़ी मूवी छूट गई थी और वो मूवी थी सीता और गीता। हेमा मालिनी जी जहां रातों रात सीता और गीता मूवी करके सुपरस्टार बन गई, वहीं आशा जी ने जब देश छोड़ा था तब वो बहुत बड़ी स्टार थी। लेकिन जब वो कुछ सालों के बाद अपने सारे डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह ख़त्म करके देश में वापस आई, तो जीनत अमान, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी जैसे बड़े बड़े स्टार्स खड़े हो चुके थे। कुछ समय तक के लिए उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को फिर भी बनाए रखा, चलाए रखा, लेकिन फिर उन्हें मज़ा नहीं आया और उन्होंने एक्टिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोशल वर्क में आज भी कई लोग आशा पारेख जी का नाम बहुत ही इज्जत के साथ में लेते हैं। तो चलिए आशा जी के इसी प्यार भरी जिंदगी के नाम अगला गाना बजाते हैं। तीसरी मंजिल फिल्म से, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ आशा जी करियर। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ। आजा।

0: इन गरीबों का हक आप इनको देते क्यों नहीं पिताजी?
1: इन भिखारियों के सामने मैं अपना सर झुका दूं? तुम ये कहना चाहती हो?
0: मगर वो सच्चे हैं पिताजी।
1: हुकूमत मालती, अगर वो सच्चे हैं तो हम झूठे हैं क्या?
0: सारी दुनिया यही कहती है, मेरा दिल भी यही कहता है।
1: मालती,
0: अगर ऐसा नहीं है तो अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए आपने मंजू को दुनिया की आंखों से कहां छुपा दिया? वो मेरी बहन है, क्या ये झूठ है? वो आपकी बेटी है, क्या ये झूठ है?
1: मालती,
0: इन गरीबों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। ये सच्चे हम झूठे हैं, ये सच्चे हम झूठे हैं।
1: खबरदार, दूसरा जबान चलाई
0: पिताजी।

0: रुक्ष्मणी वरे वांछित श्री भगवान।
1: पक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे, मस्त रहे, सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपूर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे समळदू रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडिओ पालनपूर कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन.

मस मोटा पड़कार निवांतो, नानकड़ा निर्धार निवांतो। दुनिया ने देखाय नहीं पण क्या कोई ये निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवांतो। कहानियों में भजवेला बहु अलग अलग किरदार निवांतो। तमे जोई रहा छो वातो, वातो है संजय त्रिवेदी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।